उपखार निजगा साजा। कबहू अवकीर्त में आवे कबहू पला पला कहावे, जो परवरा कह तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोह तारी लावे त्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस पतंग हो जिया अनक जोन भर में भर मिया, नाना रोज स्वागत खावे जुमपुर पावत वह नचावे। जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोय, कबू साध संगते पावे उस स्थान ते भाव न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मैं जल आय कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट के गमन पाए बिसरा नानक प्रभ के सतगुर पार सरोक। सुखी बसै मसकीनिया आपने वार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गली अष्टपदी। जिसके अंदर राज अभिमान सो नरगवादी हो तो सुवान, जो जाने मैं जो बिन भंत सोहत विष्टा का जानता। आप सुखा कर बंत कहाव जन मरे बाजून परमावै, तन भूखा जगर गमा सो मूर्खा ज्ञान। कर कर पर सक हृदय गरीबी बसावै, नानकी हमकता गै सुख पावै। तनवंता है कर कर बावै तृण समान कच संग न जावै, बालस कर मानु को पर कर आस पल भीतरता का हो विनाश। सब ते आ जाने बलवंत खिन मैं हो जाए बसमंत, किस न बदे आप अंगारे थार बराज करे खुआर। गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगाह परवान, कोट करम करें हा तारे सुन पावे सकले बिरथार। अनिक तपस्या करे अंकार नरक सुरग फिर अवतार, अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह को कैसे गवे। आप सो जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व कीरे जा का मन होए कहो नानक दा किंदर मिल सोए। जब लग जाने मूर्ति का छोए तब सुख सुख नाही कोए, जब है जान मैं किस करता तब लग बजून मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लगने च नाही चेत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन तू टैगर प्रसाद नानक छूट है, सहस कटेला का उड़तावे तृप्त नावे माए पाछे पावे। अनक भोग विख्या के करै नै तृप्तावे, खपखा मेरा बिना संतोख नहीं कोरा, जय सुभनम नोरत बिरते सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बिटपागी किसै प्राप्त होए, करन करा बने आपे आप सदा सदा नानक कर जाप। कारण करावन करने हाथ इसके हाथ का विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हो आप आप प्रभ सोए। जो कुछ की न सो अपने रंग सब ते दूर सबु के संग, पूजे देखा करे विवेक आप है एक आप है अनेक। मरण में से आव न जाए नानक सत ही रहया समाए, आप उपदिश समझे आप रचे सबके साथ। आप गिनो अपने विस्तार सब कर उसका ओ करने हार, उसते बिन को कुछ होए थान तरन तरे कैसोए। अपने चल ताप करने हार का उत्तकर रंग आपार, मन में है आप मन अपने माहे नानक कीमत कैन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद गिने वखियानी, सच सच सच सब गिना कूट मृत गिने बिरला चीना, भला भला भला तेरे रूप सुंदर पार रूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़ कड़ सुनी सुरभन वखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीता, नाम जपै नानक मन प्रीता। श्लोक संत सरण जो जन भरै सोधन दुरन हार, संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्टपदी। संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन सुख सा जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हृदय को रखे न कोय, संत के दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन गाग जो लवै। संतन के दुखन सर्प जुन पाए, संत के दुखन त्रिक जुन करमाए, संतन के दुखन तृष्णा चले, संत के दुखन सब को चले। संत के दुखन ते सो जाए, संत के दुखन नीच ने चाय, संत दुखी का थां को नाहे, नान सुध भावे तो पीगत पाहे।
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਅਤਿ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਅਖਣ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਦਿਆਇਆ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਰਾ

सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जप अवर नाम जपाव भगत पै तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख तन नाम मूट जात पाए विश्राम सगल दो कहत नास नानक नाम जपो गुरदास ओ जी प्रीत प्रेम रस चा मंत्र अंतर ही सुहाव नेत्र पेख दर सुख होए मन विकसे साध चरण धोए भगत जी नाम कै मंत्र रंग बिरला गो पावे संग एक वक्त जय करम मैं गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि पमा कही ना जाए नानक रह सर्व समय प्रभु शांति दयाल भगत विशाल सदा कृपाल अनासनाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतिपाल आदि पुरख कारण करतार भगत नाम के प्राण दार जो जपै सोए पुनीत भगत पै लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीचो जान नानक तुम शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम खर के गुण गाय अनेक राज भोग बड़े हर के नाम की कथा मन पाए भोजन का प्रसंगीत रसना जपची हर हर नीत परि सुखानु सो बदन मत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत सात संग प्रवति हो निवास सर्व सुख नानक बरगास सलोक सर्गो निर्गो निरंकार सुन समाधि आप आप किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदे जब कार ही कशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग मात जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तो तब हर कसो का कसै व्याप तो जब आपन आप आपार ब्रह्म तब मोह का किसोवत परम आपन खेल आवर्ती जा नान करने हार न दो जब होवत प्रभ केवल तानी तब बंद मुक्त का कस का कने जब एक हर अगम पार तब नरक सुर का कौन होता जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय तब शिव सकत का कठाए जब आप अपनी ज्योत रह तब कावन निडर कवन कत डर आपने जलताप करने हार नानक ठाकुर गम पार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मरण कौ का अविनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कौ किस होए जब अवगत गुजर एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छोटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही चढ़ जा नानक आप पाप ही पर जा जय निर्मल बर्ख बर्ख बत होता तय बिन मैर कहो ज्ञात होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छत्र लगत कहो गेस जय जो स्वरूप जो संग समावै तय किस भूख कवन त्रिवतावै कर्ण क्रवन कर्ण हर स्नान करते कनाय समार जब अपनी सो बाप न संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्व कला आपे परवीन तय विदिक देव कहाँ को चीन जब आपन आप उतार है तो शगन अब शगन का विचार है जय आपन हो जापन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्मत नानक अपनी गत जानू आप जय अचाल छेद पेद समाय उहा के सब व्याप्त माया आप सुख आप आदेश ते गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागा चिंता जय आपन आप दिया रत है कौन कथ है कौन सुन हारा बहुव्या दूर देव चरा नानक आप सुख आपे बहुचा जय आप रच प्रपंच कार ते गुण में किन विस्तार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत हाल जाल मार्जन जाल हमे मोह भरम वह पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खिलाफ कर दिखा खे संकोचे तो नानक कह जय अवगत भगत दया आप जय पसर पासार संत प्रताप दो पाका आपे तने उनकी सभा उनु बने आपे कौ तो करे अंध चोच आपे रस भोगन निर्जोग जिस भावत से आपन नायला जिस भावत खेल खिलावे वेश मार था अगणत तोले ज्यों बुलाव त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक एको बसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपदे आप कथे आप सुनने हारे आप एक आप विस्तार जाति भावता श्रेष्ठ भाई अपने पाण लय समाए तम ते पिन नहीं किश होए आपन सोत सब जगत परोए जा कबर जी आप जाए सच ना सोए जन पाए सो समदसी तत कावेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सबदा के हाथ दीन दयाल नाथ गो नाथ जिस राख तिस कोय ना मारे सो मुआ जिस मनो विसाय तिस तर अवर कां को जाए सब श्रेग निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दसता बलिहार पूर्ण पूर है दया सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे व्याप प्रतिपाल जीवन बा भांत जो जर चो सुत सहत आत जिस भाव तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए
ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਕਹਿ ਨਾ ਤਿਸਕੀ ਆਸਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕਾ ਸੇਵਨ ਆਏ ਹੁਕਮ ਪੂਜ ਪਰ ਮਤ ਪਾਏ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਇੰਦਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸਾਹ ਸੰਗਮਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਤ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਾਭ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਂਤਨ ਕਾਹੇ ਸੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟੈ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਹਨੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ ਮਾਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਲਤ ਬਹਾਦੁਰ ਰਹੇ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਤਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤੁਸ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋਲੇ ਬੁਲਾਏ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਾਉ ਜਾਏ ਸਾਜ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੁਮਾਰੀ ਏਕਾ ਡੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਉਭਰੇ ਰੱਖਣ ਹਾੜ ਤਿਆ ਨਿਰਪਾ ਜਵੈ ਸਗਲ ਪਾਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜੈ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਰੇ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਗੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗੀ ਦਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਚਾਨਕ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਾ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭਾਨੰਦ ਪ੍ਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾਗਰ ਨਿਕਟ ਨਾਵਦ ਕਾਲ ਅਮਰ

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे है मेरे मना। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। सो कहो टल गुर सेवीऐ एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों जटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सब नांदा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलो सोई। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलो सोई। हर का नाम न जपस गवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहया समाई। कहे कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजै

तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खड कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावह मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहाउ, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाणै, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै है जाने है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित

हमरे दुष्ट सबै तुम काबु हो, आप हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज सिंघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो मर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट की पट पट की जाने। जब उत्कर्ष करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। इकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाय अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जियस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह।

रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनिक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कैन कोई एक बार दिन

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता किल्बिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अस्तु जप पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई सुने मूड चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह हो जो याकी एक बार चौपई को कह है चौपई संबत सत्रह है सहस पणिजय अर्ध सहस।

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सोनिहान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगह है सच खरे, सर्व सुखा निद चरण हार, पौजल बिखम तरे, प्रेम भगत तिन पाइया, बिख्या नाहीं जरे, कूड़ गए दुबिधा नसी, पूरन सच परे, पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे,

सहनिस सहज सुभाए नरसन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसम दी

आत्म राम प्रगाश धन गुरु रामदास जी दे ए पावन पवित्र बचन आप जी नू सिख पंथ दे महान कीर्तनिए जिन्हां उपर गुरु रामदास जी की कृपा है भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी सरवण करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

संकट नरक पुंचत शासन दुख गरत गर्यो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है।

0: बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका, अनक पात थाटे कर थटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका, अनक पात थाटे कर थटुआ।
1: सत सत हर सत, सत सते सत पणिय, दूसर आन ना अवर, पुरख पौरातन सुनिय। अमृत हर को नाम लैत, मन सब सुख पाए। जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए। जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो, सत संगत ते प्यार। हर गुरु नानक जिन परस्यो, तिन सब कुल कियो उदार। जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो, सत संगत ते प्यार। हर गुरु नानक जिन परस्यो, तिन सब कुल

0: पापनी बुध है जेती परणत पिन पिन तो देती
1: तुमरा लखाना जाए पसारा के बे सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूप पारंक पयो राफ गई पुपा
1: अंडे चेर से दिच कीनी रुपुच खान बहु रच दीनी
0: को फूल राजा होए बैठा को सिमट पे संकिर गैठा
1: सगरी सिस दिखाए चंपव आज उगास रूप से हम
0: अमर इच्छा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख संगरो
1: दूसरी पे उठवट उत्पाता सकल मलेच करो
0: सनी परे तिनके दुष्ट कित मरे
1: चवन पग परे तिहारे तिनके तुम सकर सब तारे
0: जो कल को एक बार ते ये ताके काल निकट नहीं आए है
1: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला
0: कृपा दुष्टन जाए न हरो ताके ताप तनक मोहरे हो
1: रिद्ध सिद्ध कर मो सब होए दुष्ट चाशव सके।

0: चतुर्थावी
1: दुख दर्द भौ निकट तिन्नर के रहे हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे।
0: चौपाई संभा सत्रह सहस पुनि जयाद सहस फोन तीन कही जय
1: बादर सुधि अष्टमी रविवार तीर्थ सुद्र ग्रंथ सुधा।

0: विशिष्ट नाम लाख सवारिया।
1: गुरु प्रसादी मन पया निर्मल जी ना पाना पावे,
0: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
1: आवो संत प्यारियो अकत

0: ना कीचा जित अंत पछोताइया।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले।
1: अगम कुछ रा तेरा अंत न पाया।

0: पार प्रभाहु को नेति नेते वेद बतावे से चुतरारण से मुनारक से सब मिल गायो सके नी पारो मापत से सनात सनातन त्यायो
1: ज्ञान तरो ते को मन में जे को मितो सब जग छायो
0: वेद पुराण कतेब कुरान पे निर्पाण सबे पछारे
1: न पाए सके उन वेद को खेद दे चेत पुकारे
0: न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न

0: है सगल जहां
1: जहाँ का किया सब किच होए तिस्ते बाहर ना ही कोए।
0: कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निभाहे रहाओ।
1: सत्य जहाँ का दरबार सगल भगत जहाँ का नाम आधार।
0: सर्वव्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी।
1: जिस सिमरत दुख देरा टहे जिस सिमरत सब
0: वाहेगुरु। जिस सिमरत हो सूखे हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे।
1: संत सदा को सदा।

0: स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा
1: गुरुदेव सांसद बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: गुरुदेव आजुगा जुग जुग गुरुदेव मंत है जप उदरा
1: गुरुदेव संगत प्रमे

जगत जलन पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतवा।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहिले, राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, रखो हो रखन हार दयाला, नानक करके गोले, सजन सचा पात सा सिर साहंद सा, जिस पास बैठे सोही है सबना दावेसा हो, सजन सच्चा पात सा हो सिर साहंद सा हो, जिस पास बैठे सोही है सबना दावेसा।